0: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
1: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून. तो ले आए मॉसपेल. क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
2: मैं हूं सजल अली और मैं हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े और तेज तरीन 5G नेटवर्क जैस 5G पे. तो अब जैस 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो. जैस 5G आपका, मर्जी भी आपकी. जैस 5G हमारी सुपर पावर.
3: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: बेबाक आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना? Miracles happen.
2: City FM 89. We are playing your song.
3: You're listening to
4: Non-Stop Hits.

0: City FM 89.
1: It's 4:30 p.m.
2: City FM 89.
3: You got me going crazy.
4: पेपा कार्ड है
5: तो फायदा है।

0: फायदा दे।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
2: मैं हूँ सबा कमर और मैं यूज़ करती हूँ जैज 5G. पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क. जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो. जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी. जैज 5G, हमारी सुपर पावर.
3: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
4: सिटी एफएम 89.
5: You're listening to
6: a

0: फायदा दे।
1: मैं हूँ आसिम अजहर और मैं यूज करता हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। अब जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैज 5G, हमारी सुपर पावर।
2: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
3: City FM 89 is now live on WhatsApp.
4: It's so easy.
5: 0314-289-8989.
4: Save, text, voice note or call to get your song played.
5: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
6: Attention. Attention all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp. Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
7: You're listening to City FM 89.
8: We're playing your song.
9: You're listening to
10: The Rush Hour with ABD.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
3: मैं हूँ सबा कमर और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क. जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी. Jazz 5G, हमारी सुपर पावर.
1: City FM 89,
4: your drive along companion.
1: You're listening to
5: Future Sounds.
4: Future Sounds.
6: Vibe with us, your music.
7: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 p.m.
3: City FM 89.
4: मैं हूं सजल अली और मैं हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े और तेज तरीन 5G नेटवर्क जैस 5G पे. तो अब जैस 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैस 5G आपका, मर्जी भी आपकी. जैस 5G हमारी सुपर पावर.
5: City FM 89.
6: City FM 89 is now live on WhatsApp.
7: It's so easy.
8: 0314-289-8989.
7: Save, text, voice note or call to get your song played.
8: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
9: City FM 89.
10: You got me going crazy.
8: You're listening to
11: Future Sounds.
12: Future Sounds.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: मैं हूँ सबा कमर और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। जैज 5G से जो चाहे करो,

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: मैं हूँ सनम सईद और मैं यूज करती हूँ जैज 5G, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तेज तरीन 5G नेटवर्क। जैज 5G से जो चाहे करो या कुछ ना करो, जैज 5G आपका, मर्जी भी आपकी। जैज 5G, हमारी सुपर पावर।
3: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
4: Future Sounds.
5: Future Sounds.

0: कहीं भी जाने को तैयार, क्योंकि ये करते हैं AGS की मेंटेनेंस फ्री बैटरी पर एतबार। नो पानी, नो परेशानी।
1: City FM 89, we're playing your song.
2: You're listening to
3: Beach Camp.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: नया पॉन्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड. बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका. नया पॉन्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए. देखा ना, मिरेकल्स हैपन.
0: City FM 89 sounds different.
1: You're listening to
0: Beat Camp. Okay, high time now for our tune of the week.

0: जाने को तैयार, क्योंकि ये करते हैं AGS की मेंटेनेंस फ्री बैटरी पर एतबार। नो पानी, नो परेशानी।
1: City FM 89. We're playing your song.
2: You're listening to
3: Beat Camp.
4: Feel the beat.